0: एक नहीं दात आपस ते जो पाईए नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए।

0: देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:05 होए ने ज्ञान अमृत

उस परम पिता परमात्मा दे द्वार लगवाए रहे हाजरी भगती संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

0: एसी भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 6:30 हुए ने, हुन पेश है जी अज का खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

अयोध्या पुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगी। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग भड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: उनका रही से श्री रामचरित मानस दा लड़ीवार पाठ मानस गान। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 6:50 होए ने। आहुन तुहानू आज दी प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दी जानकारी दे दिए। जी जनाब, हाजिर है परिचय। सवेरे 7:02 का समा रहेगा जानकारी ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर दा। 8:40 ते सुनोगे प्रोग्राम महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते एक फिल्म दे गीत। आज दी फिल्म होएगी हरियाली और रास्ता। मनोज कुमार माला सिन्हा दे फिल्माई हुई। सवेरे 9:30 सुनोगे गजलां। 10:02 का समा रहेगा प्रोग्राम हेलो फरमाइश दा। 11:05 ते व्हाट्सएप ते आधारित तुहाडियां फरमाइशां दा प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। दिने 12:05 ते वाजदे वेड़े प्रोग्राम दे विच उडारिया उनवान तहत कमलप्रीत कौर होना दे नाल सुखजीत होना दी कीती गलबात सुनवाई जाएगी। साडा विरसा ते होर गीत संगीत भी होएगा। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक, फिर 2:00 तो लैके 2:15 तक का समय रहेगा प्रोग्राम फौजी वीरां लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच राजकुमार ते साथियां तो सुनोगे माता दियां भेटां। साडी दूसरी सभा दे शुरू विच मुख खबरां तो बाद 4:02 ते लैके हाजिर होवांगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:30 असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे, जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 दा समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार दा। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां, मंडिया दे भा ते झोने दी देखभाल, इस बारे डॉक्टर मनिंदर सिंह जानकारी देंगे। होर गीत संगीत भी होएगा। 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता सुनोगी रोल ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन। वार्ताकार होंगे प्रियंका अग्निहोत्री। रात 8:00 जिंदगी हसीन है 8:45 का समाचार संध्या का। 9:00 न्यूज़ एट 9 ते 9:30 खेड संसार प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम दे विच विचार चर्चा सुनोगे पंजाब विच खेड सभ्याचार। भाग लैणगे रितिन खन्ना, विनीत शर्मा। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च पंडित राम नारायण तो सारंगी वादन सुनोगे राग मारवा। रात 10:30 का समा रहेगा प्रोग्राम सरगम दा। ई सन साढ़े अज के प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा। साढ़े AIR पंजाब सेवा तो दिने 3:00 सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 7:00 ने जी 6:25
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर लैंडफिल पिलग्रिमेज, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें वधिया लगदियाँ ने, चंगा लगता है कि असं एनवायरमेंट बारे सोच रहे हैं। पर इधर टेलर स्विफ्ट बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, पर इस बंदी ने एक यहोजा काम किया है जिदे नाल एक बारी फिर तो छा गई है। कहिंदे कि 3 जुलाई नू न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन दे विच टेलर स्विफ्ट ते ट्रैविस कैलसे दा विआह होया। विआह दे करके बहुत सारे फैनस टेलर स्विफ्ट नू देखना चाहुंदे सी, उहनां दी झलक जिहड़ी पौड़ा चाहुंदे सी, सारे जमा सी। इस दौरान न्यूयॉर्क के कलाकार ने नेड़े पिया जिन्ना भी कूड़ा करकट सी सारा इकट्ठा कर लिया।

0: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰੀਮਾ ਗੁਗਲਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच

में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

0: भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की

0: सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश

0: भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरद। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मुज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment.

3 लाख शांति रक्षकों का योगदान पाया है। इस वेले 10 मिशनों 4,300 तो वध भारतीय मुलाजम तैनात ने। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा गलबात कूटनीति आलमी दखण के हितों तरजीह दी है। उन्होंने मैंबर देशों भारत की उम्मीदवारी की हमायत करने की अपील की। चुने जाने भारत 2028 तो 2 साल के कार्यकाल लिए सुरक्षा कौंसल का अस्थाई मैंबर बन जाएगा। भारत पहला 8 बार इस अहदे ते रह चुका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल अंतोनियो गुतरेश नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पश्चिमी एशिया, यूक्रेन, सूडान समेत आलमी गतिविधियों पर चर्चा की थी। उन्होंने भारत की ताकत, संयुक्त राष्ट्र सहयोग को भी मानता दी। डॉ जयशंकर 2028-29 कार्यकाल लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल में एक अस्थायी सीट लिए भारत की मुहिम की अगुवाई करने लिए न्यूयॉर्क में ने। वियतनाम के फूक्योक टापू नेड़े किश्ती हादसे में मारे गए 15 भारतीय सैलानियों दी देहां नूं देश वापस लिया गया है। वियतनाम में भारतीय दूतघर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दस्सिया है कि ये देहां वियतनाम एयरलाइंस राही हो ची मिन सिटी तो मुंबई पहुंचिया। दूतघर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, केरलम अते तमिलनाडु दी सरकार इन देहां नूं उन्हां दे संबंधित राज्यों में उन्हां दी रिहायश तक पहुंचाने लिए तालमेल करनगियां। वियतनाम के अधिकारियों ते सरकार का धन्यवाद करदिया दूतघर ने कहा कि उन्होंने प्रार्थनावां, कोशिशां अते मौजूदगी ने इस मुश्किल समय दौरान ताकत दिती। 32 भारतीय सैलानियों ते 4 स्थानक चालक दल के मैंबरों वाली किश्ती वियतनाम के फूक्योक टापू नेड़े पलट गई सी, जिस विच 15 सैलानियों की मौत हो गई। इस हादसे में बचण वाले 16 सैलानी भी भारत परत चुके ने। एक सैलानी वियतनाम के एक अस्पताल में जेरे इलाज है। पश्चिम बंगाल के साहिल से बंगाल की खाड़ी में मच्छियां फड़न वाली किश्ती के पलटन कारण 9 मछेरियां की मौत हो गई, जबकि 6 होर हजे भी लापता ने। एक किश्ती 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह तो 15 मछेरियां नाल रवाना हुई सी। 5 जुलाई को किश्ती नाल संपर्क टुट गया। साहिली सुरक्षा कारण भारतीय समुद्री फौज और राज एजेंसियों वालों चलाई गई सांझी तलाशी मुहिम दौरान एतवार को बंगाल की खाड़ी में पलटी हुई किश्ती का पता लग गया। किश्ती के कैबिन विचों 9 देहां बरामद की गई ने ते 6 लोग अजे भी लापता ने। इन्हां देहां नूं दक्षिणी 24 परगना जिले के सीतारामपुर लिया गया। DNA मिलाने लिए परिवारक मैंबरों के खून के नमूने लए गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे ते डूंघा दुख प्रगट किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों नाल हमदर्दी जताई है ते जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड तो मृतकों के रिश्तेदारों नूं 2-2 लाख रुपये ते जख्मियों नूं 50-50 हज़ार रुपये की राहत रकम देने का ऐलान किया है। बिहार के कटिहार में पुलिस ने कोढ़ा पुलिस थाना खेतर में स्थित मूसापुर पिंड में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द नेटवर्क नाल संबंध होने के शक में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कटिहार सदर 2 के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि यह व्यक्ति सोशल मीडिया चैटा और ऑडियो कॉलों राही देश विरोधी गतिविधियां और संवेदनशील स्थानों बारे जानकारी साझी कर रहा है। वह दहशतगर्द गतिविधियों नाल संबंधित समगरी का वटांदरा भी कर रहा है। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा xhandle@eirrnew जलंधर। अमरीका ने लगातार तीजी रात ईरान ते हमले किए, जिस नाल दोवां देशां विचकार दुश्मनी होर वध गई है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि इन्हां हमलों नाल ईरानी फौज नूं भारी नुकसान होएगा ते होरमुस पंजोड़ विच मासूम नागरिकां अते व्यापारक जहाजां ते हमला करन दी उस दी समर्था कमजोर हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नतांस दे नेड़े पिकैकस माउंटेन नूं तबाह करन दी धमकी दित्ती है। ये जमीन दे बेहद हेठां बनी एक परमाणु साइट है, जिस बारे पछमी खुफिया एजेंसियां नूं शक है कि ईरान विच अण ऐलानिया परमाणु सोध केंद्र बना रहा है। कल पहला अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सी कि अमरीका होरमुस पणजोड़ विच ईरानी जहाजरानी ते दुबारा नाकाबंदी करेगा। इस तो इलावा अमरीका समुद्री सुरक्षा की लागत नूं पूरा करने लई इस अहम समुद्री रस्ते ते जाण वाले समान ते 20% टैरिफ लाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल ते एक पोस्ट विच कहा कि यह नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजा ते ईरान नाल व्यापार करन वाले

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नू, ते ओ हुन हो गया शनिवार नू।
0: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छण क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवा?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आने वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उना नु कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे, आरबीआई कहिंदा है।
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
6: हुणे तुसी सुनिया सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 9 बज गए ने। हुण पेश ने जी मुख खबरां।

भारत ने 228 29 दे कार्यकाल ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे अस्थाई मेंबर वजो चोन दे ले अधिकारित तौर ते अपनी मुहिम शुरू कर दिती है। वियतनाम विच किश्ती हादसे दे विच जान गवान वाले 15 भारतीय सैलानियां दियां देहां कल रात मुंबई पहुंचियां। पछमी बंगाल दे साहिल ते बंगाल दी खाड़ी विच मछियां फड़न वाली एक किश्ती दे पलटन दे कारण 9 मछेरियां दी मौत हो गई, जबकि 6 होर अजे भी लापता ने। पंजाब दे गैर सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दियां फीसां दी नेमबंदी बारे तरमीमी ऑर्डीनेंस 226 नूं राजपाल दी मंजूरी मिली, नवां कानून लागू। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विखे वन विभाग दे 516 कच्चे वर्करां ते ड्राइवरां नूं पक्का करन दी नियुक्ति पत्र सौंपे।

पापूरन कहानी, शानदार अदाकारी, सारियां दा सुमेल है। ते तदही करके ए सिने प्रेमिया दे दिल विच वसन वाली सदा बहार फिल्म भी है। ए फिल्म जिसका निर्देशन विजय पैठोना ने किया। मुख भूमिकावां इस विच मनोज कुमार ते माला सिन्हा जी। नाल ही नाल इस फिल्म दे विच संगीत दिता महान जोड़ी शंकर जयकिशन होना ने, ते इस दे गीतकार शैलेंद्र ते हसरत जयपुरी होनी। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, उही फिल्म जिस दे गीत अजे भी गुनगुनाए जांदे ने, ते जदो गुनगुनाए जांदे ने ना उदो मुखां ते मुस्कुराहट ले आंदे ने। आओ फिर करिए शुरुआत। मैनूं पता है फिल्म दा नाम दस दुनिया हरियाली और रास्ता। ये फिल्म जिसनों से आज चुने हैं तुहाडे तक इस दे गीत पहुँचाने दे लई, ते लो फिर लता मंगेशकर ते मुकेश होणा दी आवाज़ दे विच इस फिल्म दा ये खूबसूरत नगमा। इसे नगमे नूं फिल्म दे विच सब तो पहला रखा गया है।

प्रोग्राम चल रहा है जी, एक ही फिल्म तो बिल्कुल जी, गीत सुनवा रहे हैं आज असी तुहानू हरियाली और रास्ता फिल्म दे। इस फिल्म दे विच मनोज कुमार होना नू उना दे अभिनय लई इन्नी ज़्यादा सफलता मिली कि हिंदी सिनेमा दे प्रमुख अदाकारां दे विच वो शामिल हो गए। बाद विच वो देशभक्ति दियां फिल्मां करके भारत कुमार के नाम के नाल जाने जान लगे। तो ये फिल्म सी जिस दे विच उना दे किरदार नू प्रमुख तौर पर सराया गया सी। तो इतों ही उना दे सफर की अगली शुरुआत हुई सी। आओ सुनते हैं हुण इस प्रोग्राम का ते इस फिल्म का एक होर खूबसूरत गीत। इस गीत नू अपनी आवाज़ देती है इस फिल्म दे गायक कलाकारा ने। बहुत ही खूबसूरत फिल्म ते बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म दे नगमे। इस फिल्म दी एक होर खास गल ए सी कि ए जिहड़ी फिल्म सी

हरियाली और रास्ता फिल्म दे विच हर एक गीत जिहड़ा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल फिल्माया भी गया है। ते इस गीत दे जरिए दार्जिलिंग दियां खूबसूरत जिहड़ियां चाय दे बगान दियां महकां ने कीतियां जा सकदियां ने।

बिल्कुल सरोतियो, मोहब्बत सिर्फ मिलन दा नाम नहीं, सगो यादां, इंतज़ार, खामोशी ते रूह दे रिश्ते दा नाम है। इसे ही गज़ल दे नाल अज दी गज़लां दी ये महफिल हुण इत्थे ही खत्म हुंदी है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 10 बजे ने पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे अस्थाई मेंबर वजों 2028-29 कार्यकाल लई अपनी चोन मुहिम अधिकारिता तौर ते शुरू कर दिती है। वियतनाम किश्ती हादसे दे विच मारे गए 15 भारतीय सैलानिया दियां देहां नूं देश वापस लियांदा गया है। पछमी बंगाल साहिल ते बंगाल दी खाड़ी विच किश्ती पलटन कारण 9 मछेरियां दी मौत, 6 होर अजे भी लापता। अमरीका वालों लगातार तीसरी रात ईरान ते हमले। ईरानी बंदरगाह ते नाकाबंदी दोबारा लगाउण ते अमरीकी ऐलाना तो बाद विच विश्व पद्धर ते कच्चे तेल दियां कीमतां विच तेजी दे नाल वाधा। पंजाब दे गैर सहाई सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां दियां फीसां दी नेमबंदी बारे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नूं राजपाल दी मंजूरी मिली, नवां कानून लागू। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली विखे वन विभाग दे 516 कच्चे वर्करां अते ड्राइवरां नूं पक्का करन दे नियुक्ति पत्र सौंपे। पटियाला पुलिस वल्लों 15 पिस्तौलां अते 30 कारतूसां समेत 4 नौजवान गिरफ्तार। जलंधर पुलिस वालों पंजाब पुलिस विच भर्ती कराउण दा चांसा दे के 31,50,000 रुपए दी ठगी करन वाले फर्जी IPS अधिकारी अनमोल रतन नूं शाहकोट पुलिस ने उसकी पत्नी अते पिता समेत गिरफ्तार कर लिया है। अज मशीनीकृत साफ सफाई सिलसिले लई राष्ट्रीय कार्रवाई स्कीम दी 3 साल पूरा होण ते तीजा नमस्ते दिवस मनाया जा रहा है। मर्दां दे क्रिकेट विच भारत अते इंग्लैंड विचकार 3-1 रोज़ा मैचां दी लड़ी दा पहला मैच अज बर्मिंगम विच खेड़िया जावेगा। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां।

0: प्रोग्राम चल रहे जी। हैलो फरमाइश ते प्रोग्राम दे विच वेला हो गया है एक छोटे जहे अंतराल दा।
1: की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharti.gov.in।
0: इस अंतराल तो बाद एक बार फिर तो स्वागत कर दिया तुहाडा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। आओ जान दिया आज दे साडे अगले कॉलर केड़े जुड़े ने। हैलो,
3: सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी।
3: पाली प्याला जिला हुशियारपुर
0: जी। पाली जी स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
3: थैंक यू मैम
0: जी। प्रोग्राम सुन रहे हो?
3: हाँ जी, हाँ जी मैम, प्रोग्राम सुन रहे पे।
0: ठीक है जी, प्रोग्राम सुन रहे सी ते प्रोग्राम दे विच फोन भी मिल गया है ना?
3: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: ते जिन्हां दे फोन नहीं मिलदे उहनां नूं की कहोगे?
3: बस मैम मेहनत करी जाओ। ए थोड़ी भी एक दो बारी डायल करके छड्ड दियो भी ए नहीं लगना।
0: अच्छा,
3: लगातार रेगुलर करी जाओ। जिन्ना कर गाना खत्म नहीं हुंदा ना, उन्ना तक ट्राई करी जाओ।
0: वाह जी वाह, ठीक है, लगातार मेहनत करनी पैनी है ना?
3: मेहनत तो करनी पैंदी है मैडम जी।
0: ठीक है जी, फिर मेहनत दा फल देन दा भी टाइम आ गया है ना। फोन मिल गया, हुन पसंदीदा गीत भी सुनाइए। दसो जी केड़ा गीत सुनोगे?
3: मेरा नाम जोगता दा ला दियो, जीना जहां मरना जहां।
0: ठीक है जी, फोन करन दे लई शुक्रिया।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: जी।

0: ECG ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल

पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी

0: रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

तो विदुखेड़ा तो कृष्ण कुमार, राम प्रताप, ज्योति, सुमनते, मनीषा दा। अगला मैसेज है जी, सवरन सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनूर सिंह, डॉक्टर राम कुमार नारंग अते बलदेव सिंह दा, भगवानगढ़ भुखियाँ तो। अगले साथी ने ज़िला फाजिल्का, पिंड बाजीतपुर तो पोमा ते बलजीत सिंह, बलदेव सिंह, पंचरावाला वड़िंगखेड़ा तो भोला सिंह, श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, पिंड वड़िंगखेड़ा ज़िला श्री मुक्तसर साहिब तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, राजा सिंह वड़िंग ते पिंड बाजीतपुरा तो पोमा ते बलजीत सिंह। अगले साथी ने दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा ते कुणाल मेहरा। अगला मैसेज आया जी, पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक ढींगरादा। अगली फरमाइश है मोताला महाराष्ट्र तो विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी दी। ते अगला मैसेज लिख देने, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी, मंगला बेन ते राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकिस, नेपा नगर, मध्य प्रदेश तो। मजनू कटेला तो कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ते सतना एमपी तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक ते माही मलिक। आदर्श नगर मलोट पंजाब तो लिख देने, राजा शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना ते निवान शर्मा। ते अगले साथी ने पिंड शाहपुर महतपुर तो बूटा सिंह, विजय पाल सिंह, अजय पाल सिंह, पाहुल जोत सिंह, अनहित कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ। प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर कर दें गुरदास मान दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम शुरू हो चुक्या जी। धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च सानू कई सारे मैसेजेस आए ने साडे व्हाट्सएप नंबर ते। जे तुहाडे कोल नंबर नहीं हैगा ते तुसी भी नंबर नोट कर लो 9465536077। तुसी भी इस नंबर ते मैसेज करके सानू दस सकदे हो कि तुसी किहड़ा गीत सुनना चाहुंदे हो। चलो फिर वेखदे हां कि सानू अज किहदे किहदे मैसेज आए ने। पहला मैसेज आया जी श्री मुक्तसर साहिब

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी। तो इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया जी, ज़िला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलवीर सिंह दा। अगले साथी ने सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, प्रतिशा संधू ते मैक्स ए लिखते हैं जी हरगोबिंद नगर नवा शहर तो। चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शेफाली, शेफी ते मास्टर डेविस, मनदीप सिंह, दीपा बस स्टैंड जलालदीवाल तो ये लिखते हैं जिला लुधियाना तो। नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो लिखते हैं पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर ते विशाल नहावकर, मलकापुर महाराष्ट्र तो नारायण इंगले, सोपान ताइडे ते आशीष मुहरकर। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, शोभा नायक, जे एस नायक, बेअंत सिंह लिखते ने बस स्टैंड जलालदीवाल जिला लुधियाना तो। बजतपुर कटियावाली फाजिलका तो विजय गोयल ते दादा अश्वनी गोयल, बजतपुर कटियावाली फाजिलका तो विजय गोयल, अश्वनी गोयल ते धर्मपाल गोयल। अगले साथी ने पिंड ते डाकखाना खुईया सरवर अबोहर जिला फाजिलका तो रमेश चावला, रायजल, हेजल, विहान चावला, आस्था, जयश्री ते संतोष चावला, हेमंत, दीपक, रमेश चावला, रिज्जू, बब्बू, वीहू चावला। मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। पिंड तंगौरी जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत सिंह, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान ते गर्वी ते हिमाक्ष ए लिखते ने जी जोधपुर राजस्थान तो। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश तो मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बड़ाना ते सुदामा नगर खंडवा तो लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु ते मुकेश जगताप। वैष्णव कलोनी सनावत तो लिखते ने मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमश खन्नी, रमेश गौड़ ते मोहम्मद शादाब खन्नी। सदूल शहर तो वेदपाल, इंदुबाला, रकेश, शकिला, रोहिणी, अभिनव, सानवी, मीकू, शशि, बिश्नोई ते अर्पित भाड़ू। पिंड सावन खेड़ा नेड़े मंडी डबवाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र कुमार। ते जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार ते नरगिस खातून। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें सरतूल सिकंदर दी आवाज़

जिला बरनाला तहसील तपा मंडी तो। अगले साथी ने मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्दा, ममता रानी, अभिषेक मिद्दा ते दिव्या, हरजीत कैंथ, मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो। सुरेश मावदे, श्रद्धा ते मानसी ते वर्षा मावदे लिख देने जी, साई जी साई की शिरडी तो। अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सिंह लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा ते रानी, सोनू ते रजनी। भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति ते पौरू शे लिख देने व्हाइटफील्ड बेंगलुरु तो। अगले साथी ने पिंड बिल्लीमार तो प्रेम कुमार, परवीन रानी, अलीशा अरमान, राकेश कुमार ते ममता रानी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग। न्यू माधोपुरी लुधियाना तो सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा। मलोड तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल। कैनेडा तो दीशा मोहला, जगतार जग्गा, तौला तो किंगरा तो। अगले साथी ने बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो। महमगेट नाभा तो लिख देने सोमदत्त नाभा, कैरव नाभा, ज्योति राणी ते गुरमंत। पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल, सीमा लक्षिता यशिका ते माता विद्या देवी। डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर ते कुमार गौरव मंदूरकर। गांव फ्रांसी हिसार तो राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी ते पुष्पेंद्र कुमार दूधी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़। कमल सानिया लिख देने पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो। कृष्ण बागला, आशा बागला, सज्जन बागला, प्रिंस रजनी, आंचल ते वंश बागला लिख देने जी पिंड ठेक कलंदर तो। ते अगला मैसेज है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान ते प्रतीक चौहान दा, सदर बाजार मारवाड़ बिला बिलाड़ा राजस्थान तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है जी, कंठ कलेर दा गाया होया।

खोखरा वाली तो विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी ते शगुन बारासा। माहरा दरवाज़ा एटा तो नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी ते यशफ अब्बासी। अगले साथी ने गांव जाखोद राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, दीपक कुमार खटक ते कुमारी पूजा खटक। अगला मैसेज आया है खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा ते नानक चंद मल्होत्रा। अगले साथी ने विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी ते वीकेपुरी। अगले साथी ने लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी ते रानी मानिकपुरी। ग्राम नागरा कोहरा, जिला राजनाथ गांव, छत्तीसगढ़ तो लिखते ने बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा ते बेबी आराध्या साहू। ते अगला मैसेज है जीटीपी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब तो मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, सना, समाहीना, शकीला, जैस्मिन, रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी ते सुराज ते मोहम्मद जावेद अंसारी दा। इस दे नाल ही मैनू निधि चुटनू तुसी आज दे ए मैसेज इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त देना। ए प्रोग्राम खत्म होण दा समा आ गया जी। बस चलदे चलदे सुनदे आ इक अखीरला गीत गायक ने जी कंठ कलेर ते आओ फिर इस दे नाल ही प्रोग्राम खत्म करदे आ। नमस्कार, हाजिर है कंठ कलेर दा गाया ए गीत। माफ करना, कंठ कलेर दे गीत तो बाद असी चलते चलते सुनते हैं रब्बी दी आवाज़ विच छल्ला।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड

0: के लिलेश्वर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: इकट्ठे गलबात करन, और कम से कम एक या दो टाइम का खाना जड़ा ने वो इकट्ठा खान, इकट्ठे बैठ के खान, ते अपनी डिवाइस नू, अपने मोबाइल फोन नू या स्क्रीन नू साइड ते रखन, ते किते ना किते परिवारां दी सांझ जिहड़ी है वो मुड़ तो वापस आ सकती है।
1: बिल्कुल सही किया गुरप्रीत, छोटी छोटी गल्लां जिवें वंडियां जा सकदियां ने, हस्बैंड काम तो आए ने तो पौधिआं नूं पाणी दे सकदे ने, बच्चिआं नूं नाल ला सकदे ने, बच्चे ने बच्चे होर तो कोई काम नहीं कर सकदे, पाणी दी बोतलां तो भरी सकदे ने।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही गल्ल
1: है। बजुर्गां लई वी कोई ना कोई ऐसा काम कर दिता जावे, सब्जी भी कटनी होवे है ना, कोई चीज़ सवेर वास्ते नाश्ते वास्ते प्रिपेयर करनी होवे, सो जदों असीं इन्हां चीज़ां दे विच पै जावांगे तां फोन तो थोड़ा दूर होवांगे। हाँ, इकट्ठे बैठ के तुसीं देखो, कोई सीरीज़ देख लो, कोई वैब सीरीज़ देख लो जिहदे नाल हर बंदा इंजॉय करे।
0: बिल्कुल, और जिम्मेवारियों नूं समझे, इत्थे हुण जरूरत है परिवारां दे विच इकट्ठिया रहण दे लई जिम्मेवारियों नूं समझण दी, उन्हें आ नहीं किता, उन्हें ओह किता, उन्हें ये नहीं किता, या उन्हें करना चाहिए सी ये चीज़ां करन दी जगह जेकर असीं ये शुरू कर दईए कि हाँ कोई गल नहीं, जे मेरे कोल समां है, जे वह नहीं कर पाया तां मैं कर दिता, उहदा काम जिहड़ा है वह मेरे हिस्से आ गया, ते वह घर दा ही काम सीगा, चाहे असीं घर तों बाहर भी जदों जांदे आ उदों भी सानूं समां जिहड़ा है जरूर ते जरूर कोशिश करनी चाहीदी कि पार्क विच जाइए, किसी ना किसी इहो जिही पब्लिक प्लेस ते जाइए जिथे बैठ के असी आराम कर सकी, और नाल दी नाल अपनी जहन रोशन कर सकी। इस लिए लाइब्रेरीज भी जड़ियां ने वो वधिया साधन ने, मतलब तुसी अपने परिवारां दे लई फोन नू छड़ के समा जदों कढ़ना सारे जने शुरू करोंगे ते परिवारां दे विच सांझ बनी रहेगी, और एक गलबात जड़ी है बहुत सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां मुश्किलां च पा दिंदियां ने उन्हां नूं दूर कर सकदी।
1: बिल्कुल सही गल कही, और यह ना होवे आने वाले समय दे विच ना गुरप्रीत, मैनूं तां कई बार टेंशन हुंदी है कि फोन छुड़ाओ केंद्र ना भुल जाण।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तां इस तों पहले आपां अपने आप ही पहला कदम चुकीए। सो गुरप्रीत, गल्लां बातां बहुत सोहणियां असीं कर रहे हैं, है ना,
0: जी
1: सिलसिला चलदा रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: इक गीत वल चलीए।
0: हाँ जी बिल्कुल, आओ सुनते हैं फिर एक प्यारा जिहा गीत।

0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टैक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जिबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशार, चाबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें 1 नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 348.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

8 बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। अठ बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र।

9:30 सुन सकोगे प्रोग्राम खेड संसार। अज इस विच तुसी पंजाब विच खेड सभ्याचार इस विषय ते विचार चर्चा सुन सकोगे। चर्चा करनगे रितिन खन्ना ते विनीत शर्मा। दस वज के 2 मिनट ते होवेगा शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। अज इस विच तुसी पंडित राम नारायण का सारंगी वादन सुन सकोगे राग मारवा विच। साढ़े 10 बजे का समा रहेगा प्रोग्राम सरगम का। इस तो इलावा खबरां अपने निर्धारित समय ते पेश कीतियां जानगियां। एसी साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत में आबनाए उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अकवाम मुत्तहदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंघम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड

0: वजीर किरण रिजिजू आज दोहा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। वजारत खारजा ने बताया कि शेख अमीर का जदीद कतर की तामीर में अहम तरीन रोल था, वो भारत के करीबी दोस्त थे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने कोल्ड की बीमारी को एक ऐसी बीमारी करार दिया है जिसके बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाना जरूरी है। यह ऐलान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हुक्म पर किया गया है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि इस नई हिदायतनामे के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट हिफ्जान सेहत इदारों को कोल्ड की बीमारी के तशखीस शुदा केस की रिपोर्ट नामजद सेहत हुकाम को देना लाजमी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरिक भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर, जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। मर्दों की भारतीय क्रिकेट टीम आज 3 एक रोजा बैन अल्कवामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगी। यह मैच बर्मिंगम के एज वेस्टन मैदान में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम को मजबूती फराहम करने के लिए वापसी कर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी टीम में दोबारा शामिल हो रहे हैं। भारत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 बैन अल्कवामी सीरीज में शिकस्त के बाद इस एक रोजा सीरीज में शानदार वापसी की कोशिश करेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आबनाए हुर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक्वामी मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के 2 रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां फिल्म इश्क जादे दा। इस गीत नू गाया है विशाल डडलानी अते ट्रिया घोषाल ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सास में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
2: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
1: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और

0: प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त

0: तो परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी है। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान

0: बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी राजकुमार ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां सुणोगे।

नमस्कार। तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असी तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी गीता दी फरमाइश नूं पूरा करदे हां। प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने पिंड पंगाला जिला फाजिलका तों जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप गिल, एस के शर्मा, मोहन सिंह ते जगतार टेलर। महस गेट नाभा तों सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। मंडी हरजी राम मलोट तों महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग ते होरना दे साथी। हनुमानगढ़ जंक्शन तों जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते समस्त डागला परिवार। इसी तरह झंगड़ी यमुनानगर हरियाणा तो रणधीर सिंह, बंसी लाल संधु, वरनीत, परनीत कौर ते कबीर ते जैसबीर संधु। दोस्तों इन्होंने सारे ने फरमाइश की है हरजीत हरमन की आवाज़ च कोई भी गीत सुना दो। दोस्तों जेकर गल करिए नाभा खेत्र नेड़े पेंदे पिंड डोडा च 14 जुलाई 1975 जन्मे हरजीत हरमन एक चंगे गायक, गीतकार ते अदाकार हन। इन्हां पंजाबन ते मुंदरी वर्गियां कई हिट एल्बमां दे नाल नाल कुड़माइयां ते देसी रोमियो वर्गियां पंजाबी फिल्मां च शानदार अभिनय भी कीता। इन्हां परदेसी ते जट्टी वर्गे गीतां नाल प्रसिद्धि हासिल कीती। इन्हां दी पहली एल्बम कुड़ी चिड़ा चिरा तो विछड़ी 1999 विच रिलीज़ होई सी। इस तो बाद 2002 च रिलीज़ हुई दूजी एल्बम तेरे पैण भुलेखे नाल हरजीत हरमन नूं काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। तो दोस्तों अपने स्रोतियां दी फरमाइश सुनते हैं प्रोग्राम का पहला गीत हरजीत हरमन की आवाज़ में।

सुरेंद्र कौर ते आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ में तुम सुन रहे थे खूबसूरत गीत पंडित जी की ए लाल मेरा। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई साढ़े तक साढ़े स्रोतियां वालों भेजी गई प्यार भरी चिट्ठियां पहुँच चुकिया ने। अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजने वाले ने मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, बिट्टी जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, दीपक जैन,

सब गावो गुण गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे, गुण गावत गुणी समावला। हे सृष्टि दे जीवो, ओस गोविंद प्रभु दे गुण गायन करदे रहो, जो ओस दी कीर्ति विच ही समाया होया है। ए फरमान चौथे पातशाह साहेब श्री गुरु रामदास जी द्वारा उचारी हुई राग कानड़े दीवार विच श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 1315 दे शोभनीक है। इसे करके साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं भी सब कुछ विसार के दिन रात सास सास प्रभु जी आप जी दे गुण गायन करदा रहा, क्योंकि सतपुरशां दी संगत विच मैनू ए विश्वास दृढ़ होया है कि प्रभु दा नाम ही आद तो अंत तक सहाई है, ते प्रभु ही जीव दे सदैव अंग संग है। राग आसा विच फरमान है, दिन पी गावाओ रैनी गावाओ, गावाओ सास सास रसनारी, सत्संगत मह बिसास होए हर जीवत मर्द संगारी। इस शब्द गायन कीता है भाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: दिन पी गावो, रैनी गावो, गावो सास सास रसनारी, सत्संगत मह बिसास हुए, हर जीवत मर्त संगारी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दर्शन सिंह कोमल ते उना दे रागी जत्थे ने। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता है, जिचर हर रस पलै न पाए। श्री गुरु अमरदास जी मनुख नू सुचेत करदे ने कि ऐ मनुखी जीव दी रसना, तू होरना होछे रसा पिछे गलतान ना हो, इस नाल तेरी तृप्ति नहीं होनी, प्यास नहीं बुझनी जद तक हर रस पल्ले नहीं पैंदा। इसे करके पंचम पातशाह भी राग सारंग विच उचारित शब्द विच साड़ी अगवाई करदे हुए जुगत दर्शाउंदे ने। रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, पलो नाम सुआओ। ए वार्ता सुना रहे ने प्रभ कीर्तन सिंह।
1: गुरबाणी दी ए पावन पंक्ति पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे सारंग राग विच उचारे होए अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 1220 ते अंकित शब्द विच्चों है। ए पंक्ति रहाओ दे बंद विच्चों है। पूरा बंद इस तरह है, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, पलो नाम सुआओ रहाओ। असी अपने जीवन विच कीते जाण वाले सारे कम्मां नूं दो हिस्सों विच वंड सकते हाँ। एक ओ जो करन नाल असी अपने जीवन नूं सफल करन दे रस्ते उत्ते अग्गे वध रहे हुंदे हाँ, अते सारे कम किसे ना किसे ढंग नाल सानू सफल होण दे योग बना रहे हुंदे हन। पर कुछ होर कम अजिहे भी हुंदे हन जो इस रस्ते दी रुकावट बन रहे हुंदे हन जां साडा समां निरारत गुआ रहे हुंदे हन। गुरमत विच एक सिख दे जीवन दा मंतव अकाल पुरख नाल इक मिक हो जाना दस्या गया है, अते इस दी प्राप्ति दा रस्ता प्रभु दे गुण गाउणा, प्रभु नाल प्रीत पाउणा, प्रभु दी प्रीत दी अवस्था विच उस दे गुण गाउंदे होए, उस दे गुणां नूं धारण करदे होए उस वर्गे ही हो के उस विच समा जाना है। इसे करके एक जग्यासु लई प्रभु दे गुण गाउंदे रहना एक जरूरी किरिया है जो हर जग्यासु दे जीवन दा अटुट अंग है। जो जीवन दे होर लुभावने पर व्यर्थ कम्मां नूं छड के करना बनता है, जीवन दी सफलता दे राह ते तुरना सिर्फ उदों ही मुमकिन हुंदा है जदों सानू नाम सिमरन विच्चों मिलन वाला आनंद इन्ना चंगा लगन लग पैंदा है कि बाकी दे व्यर्थ कम फिर चंगे ही नहीं लगते। फिर मनुख अजिही अवस्था ते पहुँच जाता है कि मन कहिंदा है, मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ, आठ पहर प्रभ त्याए तू गुण गोबिंद नित गाओ। अते जदों सानू ये आनंदमई अवस्था बन जाती है तां फिर सानू अपने आप ही बाकी दे सारे काम व्यर्थ लगने शुरू हो जाते हैं। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ, सच्चे सेती रत्तियां मिलिया निथावें थाओ रहाओ, होर साध सब फीकियां मन तन फिक्का होए, विन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन होए। असी दुनियावी जीवन विच तां भली भांत यह गल समझदे हाँ कि किहड़े काम साडे जीवन दे उस वेले दे मंतव नूं प्राप्त करन विच सहाई हुंदे हन ते किहड़े व्यर्थ हुंदे हन। पर समुच्चा जीवन सफल करन लई इह जरूरी है कि असी इह समझीए कि किहड़े काम अजिहे हन जो साडे समुच्चे जीवन दी सफलता लई फलदायक हन ते किहड़े निफल हन। राम रसायण जो जन गीदे, चरण कमल प्रेम भगती बींदे, आन रसा सब दीसें चार, नाम बिना निफल संसार। पर जग्यासु लई अगला ये प्रश्न आ खड़ा हुंदा है कि ये ठीक है कि सानू सदा प्रभु परमेश्वर दे गुण गाने चाहिए हन, पर ओ किहड़ा रस्ता है जिस नाल मेरे मन की अवस्था ऐसी बन जावे कि प्रभु परमेश्वर दे गुण गाने।

0: रसना राम को गुण गाओ, आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुहाओ।
1: रसना राम को जस गाओ, ये वार्ता सुना रहे सन प्रभ कीर्तन सिंह। गुण गायन सर्व कला समर्थ प्रभु दा ही कीता जांदा है। उस दी उस्तत विच उचारी बाणी उस अकाल पुरख अग्गे नमन है, नमस्कार है। तांते उस करता पुरख तो बलिहार जाइए जो मुक्ति दाता है। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर काओ बल बल जाइए, आप मुक्त मोह तार है। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरदीप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरदीप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा

0: चार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 6:05 होए ने। आओ हुण जानते हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिस विच होणगियां कम दियां गल्लां। झोने की देखभाल बारे जानकारी देंगे डॉक्टर मनिंदर सिंह। सुरक्षित भोजन, इस बारे जानकारी देंगे डॉक्टर प्रदीप कुमार। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा थोड़े मनोरंजन लिए गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी, रोल ऑफ मदर टंग इन एजुकेशन। वार्ताकार होंगे प्रियंका अग्निहोत्री। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 प्रोग्राम खेड संसार दे विच विचार चर्चा होएगी, पंजाब विच खेड सभ्याचार। चर्चा करेंगे रितिन खन्ना ते विनीत शर्मा। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम होएगा सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे पंडित राम नारायण दा सारंगी ते वजाया राग मारवा। ते रात 10:30 हिंदी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम पेश करांगे सरगम। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा। इस तो अलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा।
3: हाँ जी।
4: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
3: क्यों? पर मैं
4: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
3: इन्ने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई 30,000 दियो, नहीं तां बेटा जेल जावेगा।
3: जेल तां तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
4: ओए
3: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है। इसलिए घबराओ ना, पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो।
5: हेलो मम्मा।
3: हाय।
6: RBI कहिंदा है
3: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह

0: हाँ जी पटवारी साहब लंघ आई है जी।
1: आजू आजू आजू बल साहब।
0: पटवारी साहब जय हिंद
1: जय
0: जी।
1: हिंद जी, जय हिंद जी। होर सुनाओ बच्चे वालों की हाले चाले ने?
0: हाले चाले ठीक ठाक ने, बस तुसी सुनाओ।
1: पर अज बड़े परेशान जे नजर आ रहे हो, की गल होगी?
0: बस पटवारी साहब पूछो ना
1: की गल होगी?
0: गल, हुण की दसीए। मैं तुरन लगा इधर नूं ते राह विच साडे गवांढी ने तारा राम जी,
1: आहो।
0: ते उहनां दी नूंह जिहड़ी आ उहदी सिहत ढिल्ली हो गई,
1: अच्छा।
0: ते उह विचारे बौंदड़े फिरन। उह मैनूं कहण तूं गड्डी लै के आ,
1: अच्छा।
0: मैं हुण देखां मैं इधर नूं वी आउणा सीगा। गड्डी लै के उहनां नूं नाल लै के गया हस्पताल। हस्पताल तुहानूं पता हुण जांदे नूं कहिंदे आ वी भाई रुपया 50,000 रख दिओ इत्थे। उह मेरे वल देखण, मैं उहनां वल देखां,
1: अच्छा।
0: ते खर्चे दुखों विचारे चलो रल मिल के असीं उहनां नूं उत्थे दाखल कराया जी, ते मैं इधर नूं आ गया। पर रस्ते विच आउंदा आउंदा मैं सोच रिहा सी कि बिना बचत तों जिहड़ा आ उह जिंदगी अज कल दे समें विच जिहड़ी कट्टणी आ उह किन्नी औखी आ।
1: बल
0: सो
1: साहब, गल तां सोचण वाली है।
0: बस इसे चिंतावां करके जिहड़ा आ अज आ हाल होया
1: तां
0: पिया।
1: ही फिर
0: हाँ जी हाँ जी,
1: इदां दी परेशानी जिहड़ी है।
0: बस बस बस
1: वैसे बल साहब, जिंदगी च ना इंसान जिहड़ा है वो जिवें आपां कहिंदे ना, बचत
0: जी।
1: ये करदे रहना चाहिए।
0: हाँ जी
1: क्योंकि अपने भविष्य दे लई,
0: हाँ जी
1: जदों तुसीं इदां दस्सिया भी कोई छोटी मोटी बीमारी या कोई इदां दा अणचाहा खर्चा
0: हाँ जी
1: जदों इदां आ जांदा है,
0: जी
1: जे असीं थोड़ा बहुत बचा के रखे हुए ना,
0: बिल्कुल जी
1: तां फिर ये पैसा उस वेले बहुत ज़्यादा सानूं सहूलियत दिंदा है।
0: बिल्कुल सही गल है जी।
1: पर इंसान ना उस वेले नहीं सोचता,
0: हाँ जी,
1: ये कहिंदा जी कि अज ही सारा कुछ खर्च कर लो।
0: अपने लोगों की वैसे आदत आ, वो कहें भी जदों अग लगी उदों खूह पट्टांगे।
1: ते जदों अग बुझानी पैंदी है
0: हाँ जी
1: फिर औखा हो जांदा है।
0: हाँ जी
1: वैसे ना साडे भारत देश दे विच
0: हाँ जी
1: ये बचत जिहड़ी है
0: जी
1: ये एक बहुत चंगी आदत है।
0: सही गल है जी।
1: और इहदे लई मन्निया जांदा सी कि साडे जिहड़े बजुर्ग ने ना
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: कहिंदे सी कि लोड़ वेले ये जिहड़ी बचत है कम आऊ।
0: हाँ जी
1: पर समें दी जिवें निकलदा गया,
0: हाँ जी
1: हुण थोड़ा बहुत जिहड़ा खर्चा है
0: हाँ
1: वो भी
0: जी
1: ज़्यादा हो जांदा है।
0: बिल्कुल जी
1: इस करके कुछ ना चाहते हुए भी बचत जिहड़ी है
0: हाँ जी
1: वो इंसान करना तो चाहता है,
0: बिल्कुल जी,
1: पर बचत हो नहीं पाती।
0: गल तुहाडी सही है। कोई समां सीगा कि बचत नूं सब तों वध अहमियत दित्ती जांदी सी। आपणे तां पंजाबी दा मुहावरा कि बाणी कंठ ते पैसा गंठ, वी
1: आ
0: पैसा जिहड़ा कोल ही आ उही अपणे नाल ही
1: ओही
0: रहिंदा आ।
1: अपना है।
0: बिल्कुल जी, परिवार जिहड़े आ उह सांझे सीगे। उहनां समें विच तां देखो जी बचत घट वी हुंदी तां वी सर जांदा सी, फिर भी लोक बचत करदे सीगे। हुण तां जिहड़े आ उह छोटे परिवार आ, ते हुण तां बचत बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है।
1: बहुत जरूरी हो गई। देखो ना जी, आमदनी विचों कुछ हिस्सा
0: हाँ जी
1: भविख विच बचा के रखना
0: हाँ जी
1: बहुत जरूरी
0: बिल्कुल जी
1: है जी।
0: हाँ जी
1: अज कीती गई बचत भविख दे लई साडी जिहड़ी अनिश्चितता हुंदी है
0: हाँ जी
1: उहनूं घट करदी है,
0: बिल्कुल जी
1: ते जे असीं बचत कर लईए
0: हाँ जी
1: ते ओह साडे लई फिर औखे टाइम ते
0: बिल्कुल जी
1: साडे लई लाहेवंद हुंदी है।
0: सही गल है जी
1: तो इस करके सानूं सारयां नूं
0: हाँ जी
1: ये बचत दे लई ना इदां दा कोई ब्योंतबंदी बनानी चाहीदी है
0: हाँ जी
1: कि असीं जे साडी आमदनी जिन्नी भी है
0: बिल्कुल जी
1: उहदा 10 या 15%
0: हाँ जी
1: जे असीं उहदा बचा के एक खाता जा बना लईए,
0: हाँ जी
1: चाहे उहनूं बैंक 'च

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। रात के 8 बज चुके ने। वेलाई प्रोग्राम

जी हाँ, काम करना जरूरी है जी, काम करना पैना है, काम तो असी भज नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है जदों सानू उस काम का रिजल्ट नहीं मिलता जो असी सोचा होंगे, जो असी चाहिया होंगे, जो असी उम्मीद की होंगी है कि बई मैं ए काम करांगा तो उसका फल मैनू ए मिल जाएगा, मैं इन्नी मेहनत करांगा तो उस तो बाद मैनू ए सब चीज़ा जड़ियाँ ने मेरा नाम होएगा, मेरी इज्जत होएगी, मैनू शोहरत मिलेगी, मैनू इन्ना पैसा मिलेगा। जदों ये चीज़ा नहीं होंदिया काम करन दे बावजूद, मेहनत करन दे बावजूद, तो फिर इंसान हार जाता है, फिर वो उम्मीद छड़ दिंदा है, फिर वो उसका काम करन दे उत्ते विश्वास ही नहीं रहिंदा कि वो सोचता है कि की करना है, इन्नी मेहनत करन दा फायदा की है जेकर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा मैनू मेरे मुताबिक। और इत्थे ही असी गलती करते हैं कि ठीक है अज हर कोई काम कर रहा है और उसने कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर लगाई होंगी है, लेकिन गीता दे विच उपदेश आंदा ना कि इंसान का जड़ा फर्ज है वह कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो फिर रब देगा। कि बेशक तुसी बहुत मेहनत कीती होवे लेकिन तुहानू उस दे अकॉर्डिंग बहुत घट जड़ा है फायदा मिलिया होवे वो तुहाडे वस विच नहीं हैगा और उस दे बारे तुसी सोचना भी नहीं। कहिंदे कि जदों इंसान कोई भी काम करे तां उस दे रिजल्ट दे बारे बिल्कुल भी ना सोचे, बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे कि मैनू इस चीज़ दे बदले ए चीज़ मिलेगी, क्योंकि जदों असी उम्मीद लगा के बैठ जाने तो जदों उम्मीद पूरी नहीं होंदी फिर सानू दुख होंदा। तो जेकर तुसी कोई भी काम कर रहे हो दिल लगा के करो, अपनी पूरी मेहनत नाल करो, अपना पूरा बेस्ट दवो।

0: बहुत प्यारा गीत, बहुत खूबसूरत और ज़िंदगी नू सेद देण वाला प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर तो। वेला हो गया जी एक छोटे जे सुने ही दा, आओ सुनते हैं।
1: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है जी जिंदगी हसीन है। जी जिंदगी नूं हसीन बनाउण दा सौखा जिहा फॉर्मूला जो असीं बहुत वारी इस प्रोग्राम दे विच डिस्कस कर चुके हैं, दस भी चुके हैं, कि सुन भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं, लेकिन ना उस दे उते मतलब अमल करना बड़ा औखा जा हो जाता है। है तो जिंदगी नूं जीने दा बहुत एक सौखा जा फॉर्मूला जो कि बहुत सारे साडे अवतारा ने, पीरां पैगंबरा ने, महात्मा बुद्ध का नाम इस दे विच सब तो पहले नंबर पर आता है कि जिंदगी नूं कहिंदे जेकर तुसी सुख दे विच जीना चाहते हो तो प्रेजेंट दे विच जीओ, ना ता कल बारे सोचो जड़ा बीत चुका है, जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ नूं तुसी बदल ही नहीं सकते, ते इस करके उस दे बारे नहीं सोचना। जड़ा आने वाला कल है वो उसका कोई पता नहीं है, वो एक राज है, एक रहस्य है। आने वाले पल दे विच की होने वाला है कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तुसी नहीं कह सकते, तो इस करके उस दे बारे सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। तो जेकर जिंदगी नूं सुखमय तरीके दे नाल जीना है ना तो प्रेजेंट मोमेंट दे विच जीना पएगा, जो पल इस वक्त बीत रहे ने ना उन्हां दे विच जीना पएगा। जिंदगी ही उस चीज़ नूं कहिंदे ने कि जेकर असी इन्हां पलां दे विच जीना सीख लईए, ध्यान इन्हां चीज़ दे उत्ते ही रखिए जो चल रहा है, तो जिंदगी सौखी हो जाएगी। लेकिन इंसान की फितरत यह है कि वह सोचता बहुत है, या तो बीत चुकिया जड़ा पल है उन्हां बारे सोच सोच के परेशान हुंदा रहिंदा है, या जड़ा आने वाला कल है उन्हां पलों के बारे सोच के चिंता दे विच रहिंदा है, स्ट्रैस दे विच रहिंदा है। तो जिहड़ी जिंदगी बीत रही है, जिहड़े पल जिहड़े बीत रहे ने, जिन्हां नूं ही जिंदगी किया है, जिहड़े पल मिला के जिंदगी बननी है, बीत गया भी और आने वाला भी, वो यह पल असी हथों गवा बैठते हाँ, तो इस करके ज़्यादा नहीं सोचना। इदा का ही एक गीत है, तो आओ फिर सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कोशिश करांगे इस चीज़ के उत्ते अमल करन।

बिल्कुल जी, जो होना होगा होगा, वही सोच के तू क्या पाएगा। मतलब जो होनी होनी है उसनों असीं रोक नहीं सकते, तां सोचण दा कोई फायदा नहीं है। इस करके कहिंदे कि जो भी होएगा देख।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਅਤੇ 9:15 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही

0: आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: This is also one of the most ambitious.
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा

0: गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket, India chase a target of 259 runs set by hosts England in first ODI at Birmingham. And now the news in detail. New Delhi has said that it is closely following the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 बज चुके ने। हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार।
1: खेड संसार। सियाने कहंदे ने कि जे असीं अपने हस्पताल खाली करना चाहुंदे आ ते सानू फिर अपने खेड दे मैदान भर देने होणगे। जे ज़्यादातर लोग खेडां दे मैदान विच होणगे ते हस्पताल अपने आप खाली हो जाणगे। जिस तरीके दे नाल असीं पंजाब वासी नशियां दे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ये तां ही जीती जा सकती है जे साडे नौजवान साडियां मुटियारां खेड दे मैदानां दे नाल जुड़ियां होणगियां। सो साडे पंजाब विच खेडां दा सभ्याचार किद्दां दा है, इस बारे असीं अज दे प्रोग्राम च गलबात करांगे। साडे नाल ने रितिन खन्ना जिहड़े कि पंजाब बैडमिंटन एसोसीएशन दे सैक्रेटरी ने, और इन्हां दे नाल क्रिकेट नाल ताल्लुक रखण वाले विनीत शर्मा ने जिहड़े कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे क्रिकेटर रहे ने अपने समय दे। सो विनीत शर्मा जी, रितिन खन्ना जी, तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत स्वागत
2: है। थैंक यू।
1: सो गलबात दा सिलसिला रितिन जी तुहाडे नाल ही शुरू करदे हां। साडे सुनण वालियां नूं इह दसो कि आम तौर ते इह कहा जांदा है कि जे किसे नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर दा स्पोर्ट्समैन बनाउणा है या स्पोर्ट्स गर्ल बनाउणी है ते उहनूं बहुत छोटी उम्र चों कैच करना पवेगा। सो तुसीं की समझदे हो कि किन्नी कु उम्र दे विच बच्चा जिहड़ा उह मैदान दे नाल खेड दे नाल जुड़ जाणा चाहीदा है जी?
2: पन्नू जी, मेरे हिसाब नाल 5 to 7 साल की जिहड़ी उम्र है ना जी, वह बेस्ट है किसी भी स्पोर्ट नूं अडोप्ट करन दे लई
1: जी।
2: तो यह पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि बच्चे का जिहड़ा इंट्रस्ट है, जे एक फैमिली दे विच एक भी स्पोर्ट्समैन होवे पेरेंट्स दे विचों मेल फादर या मदर, वह जे बच्चे नूं अपने नाल खेडन लई भी नाल लै जाण, तो बच्चा जे 5-7 साल की उम्र दे विच होए तो उन्होंने उस वेले एक इनफ्लुएंस उहदे उत्ते आ जांदा है
1: जी।
2: तो जिहड़ा बच्चा 5 to 7 साल की उम्र दे विच खेडना शुरू कर लेगा

0: वो अगले 5-7 सालों के विच डिस्ट्रिक्ट ते स्टेट लेवल दे विच उहदी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएगी,
1: जी
0: ते जे उहनूं प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग मिलेगी ते मेरे हिसाब नाल अगले 10 साल दे विच विच वो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएगा। ते इहदा सीधा एग्जाम्पल असीं चाइना तो देख सकते हैं, असीं सोशल मीडिया ते बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, उत्थे दे बच्चे 5 साल तो घट उम्र दे वी ओह टेबल टेनिस या दूसरे जिमनास्टिक स्पोर्ट्स दे विच पा देंदे ने।
1: जी जी,
0: इंडिया दे विच वी इसे तरह दा कल्चर अपनाने की जरूरत है जी।
1: जी विनीत जी, जिदा रितिन होरां ने दस्सिया कि 5-7 साल की उम्र में बच्चे च खेड सभ्याचार आना शुरू हो सकता है, क्रिकेट विच तुसी किदां दा रुझान देखते हो जी, की इन्ने छोटे बच्चों च ये एक चिणग उठती है कि उन्होंने क्रिकेटर बनना इन्नी छोटी उम्र च?
2: मैं उन्ना काफ़ी अकैडमी च गया वहाँ जो कि देखने वास्ते कितने कि किसी अकैडमी च गया, 2-3 अकैडमी जलंधर से मैं विजिट किया, तो उत्थे मैं देखना मोस्टली पेरेंट्स इस चीज़ को उजागर किया है उन्होंने कि बड़ा कि वो बच्चे आप लैके आ रहे
1: जी,
2: ठीक है, वो 5 साल के 6 साल के बच्चे उस जगह अकैडमी से जा रहे और रेगुलर वो उत्थे प्रैक्टिस कर रहे ट्रेनिंग कर रहे। मैनू मैं तो वो देख रहा कि क्रिकेट विच भी इसका रुझान आ रहा है कि 5-7 साल के बच्चे पेरेंट्स नू लैके मतलब पेरेंट्स बच्चों नू लैके आ रहे उत्थे।
1: जी जी, रितिन खन्ना जी, आप ये भी देखते हैं कि जिहड़े साढ़े मध्य वर्गीय परिवार ने वो बच्चों की स्टडीज़ नू पढ़ाई नू लैके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंदे ने और बहुत सारयां दा रुझान या सोच यह होंदी है कि जे इन्हें खेडां च समा वेस्ट करता तो इहदा स्टडी करियर जिहड़ा वह सफर कर सकता। सो तुसीं समझदे हो कि यह अवेयरनैस भी फैलाउण दी लोड़ है कि स्टडीज़ वांग स्पोर्ट्स भी एक अच्छा करियर हो सकता है बच्चे लिए?
0: सर, स्पोर्ट्स एक बहुत वधिया करियर बन सकता है मगर इहदे विच जिहड़े सक्सैस होने के चांसिज ने वो घट होंदे ने
1: जी।
0: तुसी जे कोई मिनिमम पढ़ाई कीती है ते तुहानू एक कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, तुसी कोई बिजनेस कर सकते हो
1: जी।
0: साढ़े बैडमिंटन की मैं जो गल करा तो साइना नेहवाल ने एक अपनी बुक अपनी जी बायोग्राफी लिखी सी तो उन्हें कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है
1: जी,
0: कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे ते गैम्बल खेडिया
1: जी
0: मैं निकल गई
1: जी,
0: मगर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे ने जिहड़े कि मेहनत भी करते हैं जितना भी चाहते हैं चैंपियन भी बनना चाहते हैं मगर नहीं बन पाते, कई कारण हो सकते ट्रेनिंग माइंड सैट बड़ा कुछ हो सकता
1: जी,
0: तो वह फिर मिड लाइफ क्राइसिस उन्होंने फेस करने पैंदे
1: जी।
0: तो यह जी मिडिल क्लास फैमिलीज ने
1: जी
0: जिन्हों नौकरी डिपेंडेंसी होंगी तो बहुत सारे प्लेयर्स मैं देखता मिडिल क्लास फैमिलीज ने उन्हों का एको टारगेट होंगे कि मैं सरकारी नौकरी लैनी है
1: जी। बिल्कुल,
0: वो लिए जिदा तो नैशनल दे विच कोई अचीवमेंट उन्होंने हो गई उन्होंने रेलवेज ने ले लिया या किसी PSUs ने ले लिया
1: जी,
0: उन्होंने होंगे कि बस मैं अपनी लाइफ के जो अचीव करना से मैं कर लिया, मेरी लाइफ अगे सेफ है जी, फाइनैशली सेफ
1: जी जी।
0: तो यह जरा रुझान बदलन की गल है ना, ये समाज को सरकार को एसोसीएशनस को सारे रल मिल के काम करना पैना, क्योंकि स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा देना है
1: जी
0: तो सानू युवा खिडारियों से बच्चों से खेडना ही पैना
1: जी।
0: तो जो बंदा एक बार स्पोर्ट्स के पै गया वो मेरे हिसाब न लाइफ के कभी हारदा नहीं, भावे जिस भी तरह के सरकमस्टांसिज हो सर्वाइव कर ही जाएगा, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है वो जी फाइटिंग स्पिरिट है वो हमेशा रही ही रही है, तो जो एक स्पोर्ट्समैन है वो हमेशा सक्सैसफुल ही होंगे।
1: यह
0: है कि सू बैलेंस बना के चलना ही चाहिए, किसी वे इंजरी आ जाती है
1: जी
0: तो करियर एकदम रुक जाता है
1: जी,
0: तो थोड़े को अपनी लाइफ जीन लिए अपनी फैमिली सपोर्ट करने कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए, तो इस करके ये बैलेंस आउट करना बड़ा जरूरी है
1: जी। रितिन खन्ना होर ने एक बड़ी वधिया गल कही कि जिहड़ा स्पोर्ट्स फील्ड है करियर है वह डाइसी है ना, रिस्की है कि पता नहीं कई बार बच्चे मेहनत करते हैं पर वो क्लिक नहीं कर पाते, तो ये विनीत जी कई बार इदा भी होंगे कि बच्चे च उस खेड का उस स्पोर्ट का टैलेंट नहीं होंगे पर फिर भी उस बच्चे पर जोर लाया जाता। सो तुम समझते हो कि जलों किसी भी बच्चे की खेड या स्पोर्ट शुरू कराई जाए वो एक टैलेंट एवैल्यूएशन जरूर हो कि बच्चा अगे जा सकता है कि नहीं, इदा का कोई सिस्टम कोई प्रोसैस होना चाहिए जी?
2: 100% इदा का होना चाहिए, लेकिन अजकल ना अजकल जो क्रिकेट का जो डिपार्टमेंट है ना वो बच्चों तो ज़्यादा पेरेंट्स खेलते पे
1: जी,
2: उदा रीज़न की है कि जो कोई बच्चा आता है बच्चे लैके कोई पेरेंट्स आता है ना उत्थे यह नहीं गल करता कि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है या फलाने चीज, वो कहना मेरा बच्चा IPL खेलेगा।
1: अच्छा जी,
2: मेरा बच्चा इंडिया नहीं हूँ IPL
1: अच्छा,
2: खेलेगा
1: जी।
2: हूँ देखो जो पेरेंट्स की सोच IPL तक है वो सोचता पे है
1: जी,
2: तो कि कुछ ही बच्चे ते दबाव पा रहा है
1: जी, जी।
2: तो उन्हें क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं, उन्हें कुछ नहीं सोचना, उन्हें दिमाग च सिर्फ IPL वड़िया पे
1: जी।
2: यह थोड़ा जहा मैं लगता है कि जो माइनस पॉइंट है जिथे बच्चे सफर करते, बच्चों क्रिकेट खिलान पढ़ाई करा
1: जी,
2: क्योंकि पढ़ाई

0: बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिर हेड कोच
1: जी
0: इन्हीं चीज़ें प्रोवाइड होना। उस तो बाद उन्होंने कैंप्स लगाना
1: जी,
0: ठीक है जी
1: जी,
0: और उस तो बाद उन्होंने सारा खर्चा ये वो फलाना बायर जाना बायर क्योंकि आप ट्रेना से जाते सी
1: जी,
0: ठीक है। बहुत वधिया चीज़ा इस टाइम तो बहुत ही वधिया माहौल है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने जिन्ना उन्होंने बच्चों का साथ दिता। हूँ तुम देखो 14 साढ़े IPL प्लेयर है
1: जी, 14
0: तो 15
1: जी
0: जो IPL च खेलते पे
1: जी जी
0: वक् वक् टीमों
1: जी,
0: ठीक है जी। साढ़े जूनियर क्रिकेट च 4 U19 प्लेयर गए
1: जी,
0: 6 प्लेयर साढ़े इमरजिंग जेडे हूँ U25 के कैंप लगाया उस गए हुए
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। यह सारा कुछ तद ही हो पा रहा है, पॉसीबल तद ही हो पा रहा है जो पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन उत्ते टाइम ला रहा है बच्चों से, बच्चों से काम कर रहा है, ग्राउंडा से काम कर रहा है, ठीक है ना, वो करके ही सारा कुछ हो रहा है
1: जी।
0: हूँ अज की डेट से डिस्ट्रिक्ट के मैच भी यूट्यूब चल लग पे जी
1: जी जी,
0: कि वधिया उपराला है कि सारे लोग पेरेंट्स उन्हें देखते दे पे बच्चों देखते दे पे जो कोच बनता है या कोई आसे पासे के लोग है वह भी देखते दे।
1: जी
0: बच्चों भी बहुत वधिया चीज़ है
1: जी जी। रतन खन्ना जी, असं ये जानते हाँ कि साड़ी जी यूथ की ताकत है ना जी वह पिंडा च है और सानू ये पता है कि जे पिंडां दी वो जिहड़ी स्ट्रेंथ है वो फोर्स है उन्हों जे खेडां वल लाया जावे तो वह सानू अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पछाण दवा सकती है। सो जिहड़ी बैडमिंटन है ये थोड़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड और अर्बन खेड मनी जाती है। सो तुसीं की महसूस किया जी कि बैडमिंटन च भी पिंडां चों नौजवान मुटियारां इस खेड च आ रही हैं जी?
2: देखो जी, बैडमिंटन दे विच सब तो वड्डी गल है बड़ी एक्सपेंसिव गेम है
1: जी।
2: शटलकॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है, किटिंग थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है,
1: स्टेडियम
2: जड़े ने वो सिटीज़ के विच ही ने, पिंडां दे विच हले स्टेडियम ही है नहीं, सीमेंट से खेडते हैं,
1: इत्थे
2: बच्चे सिंथेटिक कोर्ट से खेडते हैं
1: जी।
2: मगर मैं एक गल नोटिस की जिहड़ा पिंडां दा बच्चा होंदा ना
1: बड़ा
2: पक्का होंदा
1: जी,
2: वो स्टैमिने दे विच कदी मार नहीं खांदा
1: जी,
2: वो मेंटली बहुत स्ट्रोंग होंदा
1: जी,
2: बस ओदी ट्रेनिंग जिहड़ी है ना वो असीं कहिंदे देसी ट्रेनिंग
1: होंदी जी जी।
2: तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हूँ बच्चे जिहड़े पिंडां दे ने ना वो सैमी अर्बन सिटीज़ दे विच ट्रेन उन्होंने करना शुरू कर दिता है।
1: अच्छा जी,
2: ते बहुत चंगी गल है
1: जी।
2: बट एदे विच चैलेंज सब तो वड्डा फाइनेंस है
1: जी।
2: बैडमिंटन क्योंकि इदा इन्ना एक्सपेंसिव गेम है कि एक प्लेयर नूं जे महीने का 5 to 10 हज़ार रुपया चिड़ियां लई ते डाइट लई चाहिए
1: जी,
2: वो पिंड दे विच अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं। इस करके पिंडा दे जिहड़े बच्चे ने ना वो दूसरे एथलैटिक्स ते वो स्पोर्ट्स वाले पासे जांदे जिथे इन्ना ज़्यादा एक्सपेंस पार्ट हाई ना होवे
1: जी।
2: बट असी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम दे विच पिंडा दे विच भी ये गेम बैडमिंटन अगे वधे ते स्टेडियम बन रहे ने
1: जी,
2: जे स्टेडियम बन जाएंगे तो वो बाद हौली हौली पिंडा तो भी बच्चे जोड़े आने चंगे आएंगे, असी तो वेट कर रहे जो चंगा बच्चा आएगा असं उन्होंने अडोप्ट करके अगे लैके जाना ही जाना
1: जी। विनीत जी, असं जिदा पिंडा की गल कर रहे हैं, तुसी आप अंतरराष्ट्रीय पद्धर के फास्ट बॉलर रहे हो और जी फास्ट बॉलिंग खेड है वह स्ट्रेंथ की ताकत की है तो वह सानू पिंडा के नौजवानों तो मिल सकती है। आपां देखिया कि भारत दियां छोटे छोटे सूबे ने उत्थों भी पिंडां चों कुछ लड़के इदां दे आए जिन्हां ने 140 दी रफ्तार ते भी गेंदबाजी की। सो तुसीं पंजाब विच भी इदां दा रुझान वेखते हो जी?
0: 100% बहुत ही यह चीज़ां चलदी ही रहिंदियां क्योंकि ना जदों एज ए सिलैक्टर मैं जदों पिछले 2 साल काम किया तो कई ऐसे पिंड सी, कई ऐसे जगह जाके देखे जिथे बहुत अच्छे बॉलर मिल सकते हैं
1: जी।
0: तो पंजाब उन्होंने कैंप भी लगा रहा है, यानी कि उन्होंने अडोप्ट भी कर रहा है, उन्होंने लिए कैंप भी लगा रहे हैं
1: जी जी।
0: हाँ, डिवेलप करते उन्होंने थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्रिकेट डिवेलप, देखो क्रिकेट जरूर पंजाब विच, मैं एक चीज़ कहूँगा क्रिकेट बहुत डिवेलप होगी जी
1: जी।
0: बाकी गेम्स मैनू नहीं पता लेकिन क्रिकेट बहुत डिवेलप होगी। अगे तुम देखो 6 डिस्ट्रिक्ट खेल दी सी
1: जी,
0: सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट, अज 22 डिस्ट्रिक्ट खेल दी और अज 22 डिस्ट्रिक्ट चो पता नहीं किन्ने जितने
1: जी।
0: अगे सी जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ ते मोहाली
1: जी,
0: 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तुसी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड गाड़ लो, कभी बरनाला जीते होएगा, कभी बठिंडा जीते होएगा, कभी कपूरथला जीते होएगा, कभी अज सैमीफाइनल चलते पे गुरदासपुर पटियाला चलता पे, मुक्तसर मोहाली चलता पे
1: जी जी।
0: डिवेलप हो रही है
1: जी।
0: और यह काम पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ही कर रही है
1: जी,
0: ठीक है ना। वो एक एक जगह पर जाके अपने बंदे भेजते है, अपने जिहड़े सिलेक्टिव उन्होंने उन्होंने बंदे रखे हुए उन्होंने भेजते, उत्ते काम करते, किदा दा काम कर रहे, वो सारा कुछ देख देखते ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ
1: ਜੀ। ਰਿਤਿਨ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ

0: प्रोग्राम सरगम, सरगम दा अगला नगमा फिल्म मनचली तो। आवाज़ां किशोर कुमार ते लीना चंद्रवरकर दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी।

प्रोग्राम सरगम दा अगला गीत फिल्म ही राजा तो आवाज़ लता मंगेशकर दी, गीत दे बोल कैफी आजमी दे ते संगीत मदन मोहन दा।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधन

0: संबोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral

0: जी बिल्कुल जी। माई वे माई नूं वेखण दे लई चरखा तां डाह लिया गया है, ते जी हुण फिर असी भी प्रोग्राम लै के हाज़र हो गए हाँ जी। हैडफोन भी लगा ले ने, ते फोन लाइन भी ओपन कर दिती है, ते व्हाट्सएप भी ओपन है जी। ते बस तुहाडी उडीक प्यारी जी सुनेहे ते प्यारी जी कॉल दे लई ते जुड़े ने साडे नाल सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तों टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका, अमनदीप सिंह ते कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज जी स्वागत तुहाडा सारयां दा। मजनू कटला दिल्ली तो प्यार भरी सत श्री अकाल भेज रहे ने जी। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गुड़िया माही मलिक ते इशिता अरोड़ा स्वागत तुहाडा भी। ते सुखवीर सिंह जी शामिल हो गए ने संगरूर तो पिंड छाजली संगरूर तो, बहुत बहुत स्वागत सुखवीर सिंह जी। कोमलप्रीत कौर ते रोशनप्रीत सिंह जी दे नाल प्रोग्राम सुन रहे ने, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। ते राम राम जी सुरेश गगनेजा जी बहुत प्यार भरी नमस्कार, राम राम जी। पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा नाल जुड़े हुए ने प्रोग्राम दे विच, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हाँ प्रोग्राम दे विच। ताज मोहम्मद अंसारी जी तुहाडा भी बहुत बहुत इस्तकबाल स्वागत सलाम सत श्री अकाल। गुलाम साहब राही महराज जहाँ आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड तो जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद अंसारी ते उन्हें सारे मैंबर स्वागत कर रहे हैं जी तुहाडा सारयां दा प्रोग्राम दे विच। ते विड़िंगखेड़ा तो विड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी जुड़े ने जी। तो फोन लाइन जरिए जुड़ गए ने साडे स्रोतियां दे विचों साडे पहले कॉलर, आओ करदे हां स्वागत उन्हां दा, बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा।
1: हैलो वीर जी, प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: नमस्कार सत श्री अकाल जी, स्वागत प्रोग्राम स्वागत।
1: थैंक यू सर
0: जी। जी कौन ते कितों गल कर रहे हो
1: जी? मैं सोनू गल कर रहा हूं, बलदेव नगर जलंधर।
0: सोनू जी वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा प्रोग्राम दे विच। ते मेरे प्रोग्राम च मैं लग रहा है मेरी तुहाडे नाल पहली बारी गल हो रही है, ते मैनूं होर वी चंगा लग रहा है जी। ते दसो केड़े गीत दी फरमाइश लैके आए हो
1: जी? तुसीं मैनूं गाणा

जी दिल पागल ते लग गईयां ने यारियां, पर बिल्कुल जी एक रिश्ता यह भी है जिहड़ी जिहदी गल दिल दी, जिस दिल दी गल, जिहड़े दिल दी गल अमरिंदर गिल ने इस गीत विच कीती है। ते पर इसे तरह का एक प्यारा जिहा रिश्ता तुहाडा साडा भी सारिआं दा बणिआ होइआ है, जिहदे विच दिल पागल नहीं है, मैं कहांगा कि दिल सियाणा है, कि क्योंकि सियाणे लोकां दे नाल चंगे साडे इस प्रोग्राम रेडियो दे नाल जुड़े हुए लोकां दे नाल साडा दिल लाया जी। ते स्वागत करदा बहुत बहुत सारे स्रोतों का, वट्सएप पर सुनेहा आया जी सानू डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया जी का पटेल नगर मलोट तो, ही उन्होंने गीता राणी जजोरिया जी, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया ते गुड्डू जी जुड़े।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत ते सुन रहे सी ये गीत मोहम्मद रफ़ी ते दिलराज कौर की आवाज़ दे विच साडे अगले फोन कॉलर जुड़ चुके ने साडे नाल आओ कर दें जी उन्हां नाल गल बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा
1: हेलो सर जी सत श्री अकाल
0: सर श्री अकाल जी शरण जी की हाल चाल
1: बहुत वधिया सर अज मेरा अपना परिचय देना नहीं पिया तुसीं दस्सा
0: ते हाँ जी हाँ जी तुसीं क्योंकि जी देखो ये है कि तुसीं बड़े दिनों बाद कॉल लाई ते पर मैं तुहानूं ये दसना सीगा मैं तुहानूं ये जताना सी ना कि भी मैनू नहीं याद मैनू ही तुहाडा नाम जिहड़ा भुलिया या तुहाडी आवाज़ दी या बिल्कुल पूरी याद आ मैनू
1: नहीं सर तुसी मैं सर सारे घरां नूं सलाम आ मेरा शुरू था
0: जी
1: क्योंकि बाहर सारी रात

असा टूर न पराए अज मुल्के, असा टूर न पराए अज मुल्के, नी गंगी ये बदामी रंगी ये, नी रोका पावी ना रिजक टुकरा में ना मैं सोने।

0: तेनू लख दे एक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई तेनू लख दे एक सुनाना ते तेनू ते तेनू

0: प्रोग्राम चल रहा जी सौगात यू करी फिर तो सब का करदा हाँ प्रोग्राम दे विच स्वागत साढ़े को प्रोग्राम दे जी बाकी जो समा बाकी है साढ़े को 32 मिनट का समा बाकी है तो जी स्टूडियो घड़ी इस वेले रात जी 12:28 या ये कह लिए कि दिन बुधवार का जो चढ़िया जी वो 28 मिनट बीत गए ने तो फोन कॉल्स अजे भी आ रही हैं जी साढ़े को अगले फोन कॉलर पहुँच गए ने साढ़े को लो जी उन्होंने करते हैं जी गल स्वागत जी बहुत बहुत थोड़ा सत श्रीकाल जी मनजीत जी की हाल चाल
1: उड़ीक
0: करी दी लो जी फिर केड़ा गीत सुनाई

मेरा टोटो इस चंदरी दी ऐनक काली होई, मेरा टोटो इस चंदरी दी ऐनक काली होई, लाज नैना दी मर गई सारी ऐनक हेठल कोई, तक तक मूंह विच उंगलां पाउंदे पिंड दे सारे दाने हन, ना जानी ना जा

0: साजन देश विदेशियड़े सनेहड़े देंदी सार समाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इसे शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी संतोख सिंह।
1: साजन देश विदेशीड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन भरिंदी मुंद नैन भरिंदी गुण सारेंदी क्यों भरा मिला प्यारे मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा क्यों पाइए पिर पारे सतगुर शब्दी मिले विशुनी तन मन आगै राखै नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखै। गुरबाणी आशे अनुसार हरेक मनुखी आत्मा उस परमात्मा रूप पति दी जीव स्त्री है। मनुखा जन्म धारण करन वालियां सारियां आत्मावां दा मूल मनोरथ उस परमात्मा विच अभेद होना है जिस तों ओ विछड़ के आईयां हन। अजेही अवस्था दा बयान इस शब्द विच श्री गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। ये पावन शब्द मनुखता दे रहबर कलयुग दे तारनहार धन धन श्री गुरु नानक देव जी का उचारिया होया है जेड़ा कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कत्ती रागां विच्चों बाईवें राग तुखारी विच्चों लिया गया है। ये राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1107 अंक तो लैके 1117 अंक तक दर्ज है अते विचार अधीन शब्द पावन अंग 1111 उपर सुभायमान है। इस संपूर्ण शब्द दे 4 बंद हन जिस विच्चों तीजे बंद दी व्याख्या करन दा यतन करदे हां। इस पावन शब्द की आरंभता विच श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे हन साजन देश विदेशी अड़े सनेहड़े देंदी। विदेशी अड़े का अर्थ है परदेश विच रहन वाला। सज्जन प्रभु जी हरेक जीव स्त्री दे हिरदे देश विच वस रहे हन पर नामहीन जीव स्त्री दुखां विच घिर के उसनू परदेश विच वसदा समझदी होई दुखां तो बचन लई तरले भरे सुनेहे भेजदी है। सार संभाले तिन सज्जना मुंद नैन भरेंदी नाम तो वांझी अनजान जीव स्त्री सहेले दुखां दे कारण विरलाप करदी होई वार वार परमात्मा नूं याद करदी है। इसे तरह की अवस्था का बयान 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1094 उपर मारू राग दी वार अंदर करदे हन। तू चौ सज्जन मैडिया डेई सिस अवतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। शब्द की अगली पंक्ति विच गुरु जी फरमाउंदे हन मुंद नैन भरिंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारे सारेंदी तो भाव है याद करना नाम तो वांझी होई अनजान जीव स्त्री सुहेड़े दुखां दे कारण विरलाप करदी है प्रभु पति दे गुण चेते करदी है ते तरले लेंदी है कि प्यारे प्रभु जी नूं किवें मिलां मार्ग पंथ ना जाणू विखड़ा क्यों पाइए पिर पारे। विखड़ा तो भाव है औखा जिस देश विच ओ प्रभु प्रीतम वसदा है।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रगासै सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सुवासै नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोग प्रवासै देखत दरस पटक परम पज्जत दुख पर हर सुख सहज बिगासै सेवक सिख सदायत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सुबासै विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो।

0: जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज आ पग दल।
1: तू सतगुरु चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहुल अगम निगम उदरण जरा जमे आरो गुरा।

जात रहे सबको सस मावैर कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्रार्थ जाए नानक तुम खंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लय बिंद्रावन में रंकिया कल मह वेद अथर्बण हुआ ना उठदा ये लो भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क।

0: अंतर पूजा पढ़क ते पा संजम तुरका भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला
1: मानस खान।

जे महका घर मुहे घर में पितरी दे अगे वस्त सजाणिए पितरी चोर करे वडगे हाथ दलाल कै मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे।